그리고 공격파 너무 지금 그거 그 미에 관계 지금 커져진다고 하지 이다고 했던 단대 다시 다 이제 때 오늘 다 신경제 그 나서 다시 그리 다사 다시 관계 이제 이제 이다고 티오 티오 거리 티에 우리 손님이 이제 관계지 이다고 해서 이제 하이다 코 코는 언니 해서 이제 하이켈리가 세티브 소리 컨디션 언니 크리티 언니 게티 Tutan betani June sa ile July ko tani re sa di te chokin re tan di tagon di au lisan ki ki ze sa si te tu ji tu te ze zi on te ile de ka ka di au lisan ni ne de ki ti ko ze ti kon di se se ju ta ko na ke kyung o do ji delta ji la ji tu tan ko ze sa sa ji sa kan di ki sa ni kan di ko wa zen da le Tu sala kashin di hona, it's at the high, this one 2020, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018,
ka ndé wá tsé ká yí shí ká yí tá ná rá tsé ká tí lán tí áng tí kán tí shí lá yí shí yú kán ká tó yí ná rá stó ká tó yí tí tsá gá yí tán tá rá kán tí á yí shí kó yí tán shí wá tí tá rá yí tsá gá yí tán tá kán tí ké tí ká tsá yí tsá gá yí tán tá rá yí ár tí ké rí yá kí yí tá kén tí ká rá yí kí yí tsá kán tí gá yí tán tá rá kán tí wá tí ká yí shí tá kán tí tí kén yá kán rá tí lán tí ये तने सेज तसी कोनी चेक को क्या न था सर उधर न कोनी थाम छंग यूज दे सो दे ते ती कति यु खान दे से कब में को हे कर न था सो दे ते सारी नो स्टॉप को तो यु खान जे री छकी छकी सो के जी का तन दल खान यो जे था दे रे जी आ ती कोनी को है तन दल को जे जी चेक के से तसी से छंग के जे री केन दाई जी तसी जो शे ती जे श्रब्स करन दियो जे Willows can just see country corn condition shaking with an older teaching older eighty condition shaking as one can die. You can see country radija and the see candy cash as you tell at the Sante condi. Because at the name you get good need suck on you, I think condi could like the cancer and the executive as I see condi could be shots at the cashier as you know the tinday do not to suck on easy to die in two condi. ये खंडी जाए थी खंडी तो ये देता तो ये देता तो ये चल जाते हैं देर की लीवर नियम दिया थी के थी ये तस्सी खंडी ये जी टाइम ही तस्सी खंडी क्या है था खंडी रिसर्चर्स ने कह जी जो ना को सातों दिन देखे आते हैं तांडी जो ताते हैं खंडी के खंडी दिया के थी खंडी रिसर्च हो गई थी के थी कुछ ना कुछ कुछ इंडेशन जी ऐसे गोवा में चाहने थी तेंदुए क्यों ना तो सीखा लेता गोवा में तेरे को रोल कॉलेज के जी सीखा नहीं खाओ नहीं रही जी तो सीखा नहीं डाक गोवा में तेरे को नहीं रही जी तो तेरे को नहीं अच्छी लिया खाने चाल किया खाने अलग से तो खाने वो एरली लर्निंग खाने सीखा ल तो सी कौन दिका संभव चीनी तो तू था ले संभव कुछ आते हैं जून्दी जून्दी जब नवंबर को जंसारी संभव जाते हैं जेता को आओ तेता जेता के सी कौन दिया खाए चेंटी लतों नॉले मिल इधर हर मिल थाउजेंड संभव दे कौन दिया जी संभव कुछ आते हैं जाओ जन ले तो सी ना और खास को आओ के ठेका को आओ के जी के दी तो ये तस्सी कौन दी थी कि शायद ऐसा और कॉलेज कोई देखो तो इतना ये इतना शुरू ये तस्सी कौन दी तो इतना ये बिल कोई में तो कौन दी को तो ये कोई तो शुरू कि सारा क्या ना ग्रेजुअल तो दी जी जी तो हम लोग ने वो रह लिखा कोई वो अगर दिखे थी ना राहुल हैंडल और कॉलेज को ये जी कोई देखो दी प्रेसिडेंट कौन दी के साथ � Everything that you see, how do you, or the car?

0: 你的 19 或者以科学的这个是被经理或者过来读证这个来证他呢在真的做也去顾客这里去过证他呢在那可能能弄些这个证他你个这卡里提了在那还黑你在等了还开了车等了个来得了有我开了车不嘛是的你不得不那受了这应该的这里给
1: 你在开了库地开了开了来打你在来打弄得了
0: 库路一把古杰拉公在古拉达一到库里一我把古杰拉公在那个来 hospital 在那拆了我的一把卡住了姐姐了保释姐姐姐姐了卡进了ये कोलाता आज इन ला बागुचे ला कौन तरा कल या खेड़ा ला क्लब का साकी इंटरनेट दाहों ये शक्की की दिले या ठीको गागा ला इतरा ये ताशी की दिवारें दे ताहुसुन जेना से केला सुनी हाथिरा उन्ते कोचां ताशी कुतेना से केला सुनी हाथिरा ये ताऊ ये कोला ये कोला बोना ताज ऐसे बाकाचेरी ठीक कोला ऐसे ने
1: Y la tulit agotso Stella Bea Yali y tenajare y tiono sastin kai kohe y tulit agohe na in kueko tana in kueko so kohe so tanke he alain tale y wa teneje kuate masi.